फिर फूलों का तारों का सपना कहना है। फिल्म ini sangat sukses sekali, dirilis di tahun 1971. Disutradarai dan dibintangi sendiri sama Dev Anand. Dan kenyataannya film ini sukses besar.